0: हाँ दुनिया तुए
1: वही रपेसा म्यान कमारन सुफा तुंगे नोर फांजा ऐसा किन फोन डाला ना तुंगा सुअलुए
2: सुफा का ये तो पसला माना कुए इफा लांड्रे इन फोन डाला ना
1: अंदावरा मुमान सुअ तो चानुए
0: हरिया इस रम सिन तो यनोसन जाजियन न्यात
1: लसने तान बुलियांड्रे ईज़
0: हाय मु आरकन तेन को नॉन रायमंडे इन मुदे इज़ोंगा मन फ़तोने इलाज़ को नॉ माकास क्लाइज़ आवट्रा नकार कराई कुन तुन रक्तारा तासीन हानो फने तान नॉ माकास कन फंडिंग रापी तेरा नम रेडियो फनाम बिनं सिक मुवे कवुन्ने नो
2: अमाफिस के तेन ताज़े तेन रामाई तेन वां टेपे तक लोचन सजाते Anao ni fanetana neti yo?
1: Tena vonona re a, rasena dia tavanareo fanampiana vaty amiko.
0: Misaotra ravoary a. Raha mety aza dia izao ihany sika no akany.
1: Aleo ary loha teriko any amin'ny renibendry eto sasy reto e, dia io manakely vetivety a dia mandeha sika avy eo.
0: Eny ary, andrasana iaho ivelanao ianao fa ny andro koa ity efa mafana.